0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Ya Nabi subah sham kijiyega.
3: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
6: And the winner is
7: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
12: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
13: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
12: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
13: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
12: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाज और रोजा और कुर्बानी और हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: सबसे औला आला हमारा नबी

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
7: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 257 दुबई ज्वेलर्स
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: सीखी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
4: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
3: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
4: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
3: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
4: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
10: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
11: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
10: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
11: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
10: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
11: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477257।

0: दुबई ज्वेलर्स।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment?
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब

0: शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दें।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: इलाही गंज दरवेशानी ज़ादे मुस्तरानी, माया रमीद गानी, दस्तगीर दर मांदगी, चून मी आफरीदी, जोहरे मायूब मी दीदी, मी बरगजीदी, वबा ऐब मी खरीदी, बरगर रफ्तगी व कसन गुफ्त के बरदार, अकनून के बरगर रफ्तगी हम गुदाज, व दरसाया लुत्फत मीदार, वजूस पर फसल खुद मसार। मौजे समीन कराम, इसका तर्जुमा है, ये ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी की लिखी हुई मराजात है। तर्जुमा इसका है, इलाही तुम मुफलिसों का ख़जाना है, मुस्तरिब लोगों का ज़ाद राह, धतकारे हुओं की कुवत, दरमानों का हामी, तू जब पैदा कर रहा था तो ऐबदार सरिश्त के होते हुए भी हमारा इंतखाब किया, किसी ने तुझे चुनाव का नहीं कहा, अब जाके तूने हमें चुन लिया तो छोड़ ना दे, और अपने साया रहमत में रखना और सिवाय अपने किसी के फजल के सपुर्द ना करना। मौजूदा सामीन कराम, इस वक्त आप समाज फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। यही नशियात पहुंच रही हैं डैप के ज़रिए भी आप तक, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुंचती है इंटरनेट के ज़रिए। हमारा वेबसाइट का पता है www.bradfordasianradio.co.uk। साथ ही साथ आपका जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है या एंड्रॉयड, उस पर भी आप हमारी नशियात से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप हमारी नशियात को सुन सकते हैं जहाँ कहीं भी मौजूद हों। आपसे मुखातिब है आपकी मेज़बान उज़्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा, और हमेशा की तरह पुरुमीद और दुआगो कि आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं बखैरियत हैं, शादो आबाद हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के भी साथ साथ हैं। समीना कराम, आज का जो इंतखाब है उसकी तरतीब व तफसील से भी आपको हम आगाह करते चलें कि आज के इंतखाब में क्या सुन पाएंगे आप। जी हाँ, गीत तो आप सुनते ही हैं, चंद खूबसूरत से, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ बहुत पुराने गीत, मिले जुले गीत होते हैं, आपकी डेडिकेशंस के साथ हम आपके लिए पेश करते हैं। इसके अलावा आप फरमाइश भी कर सकते हैं, तो आपके फरमाइशी गीत भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो उसके लिए लेकिन होता क्या है कि आपको ज़ाहिर है प्रोग्राम में शामिल होना पड़ता है। प्रोग्राम में शामिल होने का एक तरीका है, स्टूडियोज़ का नंबर है, उसके ज़रिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अब वो क्या नंबर है, वैसे तो बहुत से लोगों को इल्म है, हमारे जो पुराने लिसनर्स हैं, लेकिन कुछ नए भी होते हैं, तो उनके लिए अभी हम नंबर दोबारा दोहराएंगे प्रोग्राम में, आप सुनते रहिएगा इसको। साथ ही साथ समीना कराम, गीतों के अलावा हम आपके ज़ौक की तस्कीन के लिए कुछ शेर व शायरी अपने प्रोग्राम में शामिल रखते हैं। मुंतखब शोरा का मुंतखब कलाम आप के लिए लेके आते हैं हम, और आपको सुनाते हैं। इस सिलसिले को भी आप बहुत पसंद करते हैं शेर व शायरी को, क्योंकि शेर व शायरी जो है वो हर शख्स को पसंद होती है, शायद ही शाज ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको शेर व शायरी पसंद ना हो। पसंद ना भी हो अगर शेर व शायरी, तो फिर ये जो गीत हैं ये शायरी ही तो होते हैं, शायरी ही की एक शक्ल है। तो गीत तो पसंद आते हैं सबको, अब ये मुख्तलिफ पसंद हो सकती है, अलहदा किसी को सैड पुराने उदास गीत पसंद हैं, किसी को धूम धड़क्के वाले शोक गीत पसंद हैं, कोई जो है वो बस धीमे मिजाज के मिले जुले गीत सुनता है। और फिर आपके मूड पे भी डिपेंड करता है कि इस वक्त आपका मूड कैसा है। बहुत अच्छा मूड है, आप चाहते हैं कि नहीं जी बस अच्छे अच्छे गीत खुशी खुशी वाले गीत लगाए जाएं। थोड़े उदास हैं तो आप चाहते हैं कि नहीं जी कोई उदास गीत भी होना चाहिए, रोने धोने वाला, या फिर आप अगर वैसे ही सुन रहे हैं प्रोग्राम को वक्त गुजारने के लिए, तो फिर आप कहते हैं कि जो भी लग जाए ठीक है, नया हो पुराना हो, उदास हो शोक हो, सब चलता है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना जज्बात एहसास इंसान के वक्त के साथ, माहौल के साथ, हालात के साथ, सबसे बड़ी बात, बदलते रहते हैं और इंसान की पसंद भी उसी हिसाब से आगे पीछे होती रहती है। तो ये कोई ऐसी ख़ास बड़ी बात नहीं है। हमारे पास आप के लिए हर तरह के गीत मौजूद होते हैं, उदास सुनना चाहें, शोक सुनना चाहें, शादी ब्याह के गीत सुनना चाहें, कोई गज़ल सुनना चाहें, तो सब चीज़ें यहाँ पर ब्रेडफोर्ट एशियन रेडियो के पास मौजूद हैं आपको सुनाने के लिए, आपको पहुंचाने के लिए। तो ये इंसान को जहन में मतलब रखना चाहिए कि वो जो भी सुनना चाहते हैं आप हम तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए स्टूडियोज़ के नंबर के ज़रिए, जो कि है 01274306677, 01274306677, इस नंबर के ज़रिए आप अपनी फरमाइश या डेडिकेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर कोई आरा और तजावीज़ हैं प्रोग्राम के हवाले से वो भी आप हम तक इसी नंबर के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे मज़ीद क्या प्रोग्राम में शामिल है। जी हाँ, प्रोग्राम में हम शामिल रखते हैं तारीख़ के और आग से कोई ना कोई तारीखी वाक़ा जो हम आपके गोश गुजार करते हैं, जिससे आप महसूस होते हैं, मुस्तफ़ीज़ होते हैं, सबक आमोज़ तो वो होता ही है, यही उसकी वजह होती है, वजह तस्मिया जिसे कहते हैं ना, कि प्रोग्राम में उसे शामिल करने की। इसके अलावा क्या होता है, जी हाँ, आज की छोटी सी खास बात के उन्वान से हम एक छोटा सा कोई कॉल किसी बुजुर्ग का, जिन्हें अकवाले जरी के नाम से लोग जानते हैं, पहचानते हैं, याद रखते हैं, तो वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल रखते हैं, उसे भी, वो भी आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। और जी हाँ, जनाब अशफाक अहमद साहब का जाविया, वो प्रोग्राम में ज़रूर हम शामिल लगते हैं, क्योंकि बहुत पते की बातें उससे हमें पता चलती हैं, मिलती हैं। आज का जो जाविया है अशफाक अहमद साहब का, वो क्या कहता है, किस बारे में है, वो भी अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि क्या उन्वान है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, दूसरे घंटे में हम आपको जाविया जो है अशफाक अहमद साहब का वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा क्या है ज़मीन का, बहुत सी चीज़ें होती हैं प्रोग्राम में, सबकी हम ख्याल रखते हैं पसंद का, कि सबको कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जो उनको पसंद आ जाए, कोशिश ये होती है हमारी। बाकी इसमें कहाँ तक कामयाबी हुई, कितने कामयाब हुए हम, ये तो फिर आपकी फ़ोन कॉल्स, आपका जो फीडबैक है वो हमें बताता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमेशा अच्छा फीडबैक रहा है, बड़ी हौसला अफजाई करते हैं हमारे, खसूसन जो कुछ ख़ास लिसनर्स हैं जो प्रोग्राम में शामिल ज़रूर होते हैं, सुनते तो बहुत से लोग हैं लेकिन शामिल कम कम ही होते हैं, तो जो शामिल हो जाते हैं बड़ी बाकायदगी के साथ, हम तहे दिल से उनके भी मशकूर व ममनून हैं कि हमेशा वो अपनी फीडबैक से नवाजते हैं, हौसला अफजाई फरमाते हैं। और इस तरह से फिर दिल भी चाहता है, फिर ये महसूस होता है कि ठीक है जी, हम जिनसे मुखातिब हैं ना वो सुन रहे हैं। असल बात ये होती है कि आप सामीने कराम हैं, हम बोलने वाले हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, प्रेजेंटर हैं, प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए पेश किया जा रहा है अगर वो बात को सुनते हैं ध्यान से, और फिर यह है कि वो बताते हैं हमें फ़ोन कॉल करके कि जी हम आपके साथ हैं, आपने फलां बात की या ऐसा है या ये गीत सुनना है, तो फिर मज़ीद तकवीत पहुंचती है दिल को, मज़ीद जिसे कहते हैं ना खून और पंप करता है दिल, सेहतमंद खून, और फिर इंसान चाहता है कि मज़ीद क्या कहिए कि मज़ीद जज्बे के साथ, मज़ीद हौसले के साथ और बहुत अच्छे से प्रोग्राम को पेश किया जाए। तो और क्या था बीच में प्रोग्राम में शामिल, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नुक्ता, क्योंकि गौर व फिक्र करना चाहिए, तदब्बुर तफक्कुर जो है ना, ये एक हम अपनी बात नहीं कर रहे, अमूमी बात कर रहे हैं जनरली, कि एक होशमंद बाशऊर शख्स की एक बहुत बड़ी निशानी होती है और ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि अल्लाह ने आपको जो दिमाग दिया है, जो शऊर है आपके पास मौजूद है, जो आगही है, उसके ऊपर फिर आप मज़ीद उसमें इजाफा करने के लिए गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तफक्कुर करते हैं किसी न किसी चीज़ पे, क्योंकि वैसे सरसरी हर चीज़ को देख लेना, गुजर जाना, वो तो देखिए ना, जानदार जितने भी हैं, परिंदे हैं, चरिंद हैं, हैवानात हैं, वो सब के सब देखते हैं, सुनते हैं चीज़ों को, लेकिन उस तरह से महसूस नहीं करते। तो ये महसूस करना जो है ये सिर्फ इंसान ही का खासा है, और फिर वो उसको महसूस करके जिस तरह से फिर उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में गौर करता है, उसके बारे में वो ध्यान में ला के उस चीज़ को देखता है कि ये अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है, अगर बुरी है तो फिर इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, अच्छी है इसे और मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, कितनी ये फ़ायदा मंद है بنی نو انسان کے لیے, یعنی اپنے بارے میں وہ انسان پھر صرف نہیں سوچتا, وہ پھر پوری کائنات کے بارے میں سوچتا ہے. اس کا دائرہ کار جو ہے نا, جسے کہتے ہیں, بہت وسیع ہو جاتا ہے. اور اسی کو ویژن بننا کہتے ہیں نا. ویژن بنتا ہی اسی سے ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں, پھر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اس کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی بہت تحقیق آپ کرتے ہیں, آگہی حاصل کرتے ہیں, علم جسے کہتے ہیں نا, نالج, وہ آپ لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ اپنا ایک زاویہ نظر بناتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی باتیں, وہ بات سے بات نکل آئی تو زیادہ تھوڑی تمہید پڑ گئی. بہرحال اب ہم چلتے ہیں بہت خوبصورت سے گیت کی جانب. آپ کو یہ گیت سنواتے ہیں, امید کرتے ہیں آپ اس گیت کو پسند کریں گے. اور ہم نے جیسا کہ بتایا کہ اسٹوڈیوز کا نمبر 01274306677, یہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے سامعین کرام, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے اسٹوڈیوز کا. آپ اس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی میزبان عظمیٰ اشفاق سے بات کر سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے. کوئی ڈیڈیکیشن ہے یا کوئی فرمائش ہے اس حوالے سے, لیجئے اس گیت کو سنیے گا.

0: 63 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो आपके दिलों

0: रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रेडफोर्ड एशियन।
3: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: मौजूद सामीन कराम, इस वक्त आप समाप्त फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। डैब के ज़रिए भी यही नशियात आप तक पहुंचती हैं और साथ ही साथ इंटरनेट के ज़रिए भी हमारी नशियात को आप सुन पाते हैं जहां कहीं भी हों दुनिया में, www.bradfordasianradio.co.uk के ज़रिए। साथ ही साथ अपने मोबाइल फ़ोन पर जहाँ भी हैं आप, बस नेट होना चाहिए। अगर आपने हमारा ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर रखा है तो आप सुन सकते हैं हमारी नशियात को। ज़रका साहिबा, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और आपने जनाब फरमाइश की एक ख़ास गीत की, और वो ख़ास गीत आपने क्यों फरमाइश की? जी हाँ, आपके घर अल्लाह ने एक छोटी सी नन्ही सी परी भेजी है, रहमत भेजी है अल्लाह ने, तो उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर आप ये डेडिकेशन जो है ये आप करना चाहती हैं उस बच्ची के नाम। तो ये खूबसूरत सा जो आने वाला गीत आपकी ही फरमाइश पर उस छोटी नन्ही परी के लिए होगा, और साथ ही साथ दीगर सुनने वाले भी इस गीत को इसलिए पसंद करेंगे कि बहुत अरसा हो गया इस गीत को सुने हुए, और आवाज़ भी ज़ाहिर है मोहम्मद रफ़ी की है। तो जो मोहम्मद रफ़ी को पसंद करने वाले लोग हैं समीरा साहिबा, जिनमें आप सरे फहरिस्त हैं, आपको भी पसंद आएगा। और उसके बाद याद रखिएगा, इस गीत के बाद जनाब अशफाक अहमद साहब का जाविया होगा इंसानों का कर्ज। तो ये क्या कर्ज़ है, किस कर्ज़ की बात हो रही है, और ये सब इंसानों की बात हो रही है, सिर्फ किसी एक ख़ास शख्स की बात नहीं है। इसलिए गुजारिश है कि सुनते रहिए प्रोग्राम को अपनी मेज़बान उस्मा अशफाक के हमरा। लीजिए फिल वक्त ये गीत।

0: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

जी सा मैंने कहा, खूबसूरत सा आपने गीत सुना, मेलोडियस गीत था। अब थोड़ा सा मूड को अपलिफ्ट करते हैं ज़रा सा, और ये वाला गीत सुनते हैं। तो देखिए ये गीत थोड़ा सा एक क्या कह लीजिए कि आपके हो सकता है मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट करे। थोड़ा सा आप अगर सुस्त महसूस कर रहे हैं ख़ुद को, तो थोड़े से आप अलर्ट हो जाएंगे, थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे। लीजिए सुनिएगा।

जी हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को गीत बहुत अच्छा लगा हो, उनका थोड़ा सा मूड भी अपलिफ्ट हो गया हो। ज़रा धूम धड़के वाला थोड़ा सा गीत, अब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा था। तो अब एक और खूबसूरत सा गीत आप सामाईन के नाम पेश करते हैं। जुनेद साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात को सुन रहे हैं। आपने कहा कि जी कोई अच्छा सा गीत आपके लिए लगा दिया जाए, काम काज में मसरूफ़ हैं आप, साथ साथ आप रेडियो सुन रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी नवाजिश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आने वाला जो गीत है वो हम जुनेद साहब आपके नाम करेंगे, कि उम्मीद तो यही करते हैं कि पसंद करेंगे आप। लीजिए इस गीत को सुनिएगा, पसंद नहीं आया तो फिर बता दीजिएगा, हम कोई और अच्छा सा गीत जो है वो आपके लिए पेश कर देंगे। तो सुनिए इस गीत को।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन खाए
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
4: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
4: जो दुल्हन करे सिंगार
5: आज ही मामू काके की दुकान
4: खालिस सोने की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
5: आपकी शान
4: हमारी आन
5: क्वालिटी की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 फुटलैंड ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
6: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
5: सोफी ज्वेलर्स
6: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
5: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
4: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
7: UK.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
11: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
13: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
11: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मेनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मेनिंगम सुपर स्टोर
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो आपके दिलों में रस खोलने
14: जी मौजी सामीन कराम समाज फरमा रहे हैं आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे
8: ڈیپ کے ذریعے بھی یہ نشریات اب تک پہنچتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آن لائن بھی ہماری نشریات جو ہیں وہ پوری دنیا میں آپ سن سکتے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ ہمارا جو ایپ ہے فری آف کاسٹ ہے موبائل ایپ, اس کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق. پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں. اب بس پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے. چند لمحات باقی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. یہاں پہ ابھی بھی آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر 01274306677, جی ہاں 01274306677, اس نمبر کے ذریعے آپ اپنی فرمائش یا ڈیڈیکیشن ہم تک پہنچا سکتے ہیں. لیجیے اب ایک اور بہت خوبصورت سا گیت سنتے ہیں. کافی عرصہ ہو گیا اس گیت کو سنے ہوئے تو آج سوچا کہ چلیے اس کو بھی آج سن لیتے ہیں. اچھا لگتا ہے بعض اوقات بہت دیر کے بعد جب کوئی آپ بھولا بسرا پرانا خوبصورت سا, بہت پرانا خواہ وہ بے شک نہ ہو لیکن بس وہ کانوں کو بھلا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, تو پھر بڑے عرصے کے بعد جب آپ اس میلوڈیس گیت کو سنتے ہیں تو پھر آپ کے کانوں کو زیادہ بھلا معلوم ہوتا ہے. لیجئے اب اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا.

सामिन कराम, थोड़ा सा अगर गौर करें तो पुरानी जो फिल्में होती थी, यानी बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, चलिए 20 साल 25 साल पुरानी बात कर लीजिए उस दौर तक, तो उनमें कोई कहानी होती थी और जितने भी गीत उस फिल्म में होते थे वो उस फिल्म की कहानी से जुड़े होते थे, यानी उनका बड़ा ताल्लुक होता था, बल्कि वो उस कहानी को मज़ीद, जिसे कहते हैं ना, एलेबोरेट करते थे, उस कहानी को खोल के बयान करते थे। इस तरह के गीत लिखे जाते थे, ऐसे ऊट पटांग गीत नहीं होते थे जिनका ना कोई सर ना पैर। अगर आजकल के आप गीतों को सुने, माजरत के साथ, कुछ लोग बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन उनमें ना कोई शायरी ऐसी होती है, ना कुछ ऐसा ख्याल बीच में बताया गया होता है। और अगर फिल्म देखें तो वो फिल्म की कहानी के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। ऐसे लगता है बस उठा के इस गीत को इसके अंदर डाल दिया गया। उसमें ऊट पटांग सी छलांगें होती हैं, क्या कहते हैं कि वो, डांस के नाम पर। तो वो ना तो आँखों को भला लगता है वो गीत, ना कानों को अच्छा लगता है। तो बस क्या कहें, समझ नहीं आती है कि वो तख्लीकार जो थे, जो इतने खूबसूरत खूबसूरत गीत लिखा करते थे, जो उनको फिल्माया करते थे, डायरेक्शंस होती थी, जो प्रोडक्शन टीम होती थी, इसके अलावा जो संगीतकार थे, जो मौसीकार थे, फिर गुलूकार थे जो उन गीतों को गाते थे अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में बड़े दिल के साथ, तो वो कहाँ गए सब लोग, कहाँ गुम हो के रह गए हैं। हर कोई जो है वो बस पैसा कमाने के चक्कर में कि जी रोज़ाना 10-10, 15-15 गीत रिकॉर्ड करने हैं या लिखने हैं, तो जब लिखेंगे भी तो फिर कहाँ तक इंसान तख्लीक कर सकता है। तख्लीक इतनी आसानी से नहीं होती है, उसके लिए बहुत आपको दिल चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है। आप आराम से बैठ के, सुकून से सोच समझ के, फारिग होके फिर ख्याल आपके जहन में आते हैं। तख्लीक का अमल कभी भी आसान नहीं रहा, खा वो एक माँ औलाद पैदा करती है, खा वो एक शायर अपनी शायरी लिखता है, खा गीतकार गीत लिखता है, धुन बनाने वाला धुन बनाता है, उसके ऊपर जो परफॉर्म कर रहा है जो भी फनकार है वो जो परफॉर्मेंस देता है, तो ये सब चीज़ें तख्लीक के ज़ुमरे ही में आती हैं। तो वो कोई आसान अमल नहीं होता। तो जब आप एक चीज़ को दिन में 10-15 मरतबा करना पड़े तो फिर वो तख्लीकारी कहीं दूर चली जाती है, बस सिर्फ पैसा ही पैसा नज़र आता है। तो पैसे की झनकार बज़ाहिर अच्छी लगती है वक्ती तौर पे, लेकिन उसका कुछ ख़ास असर नहीं होता, ये जहन में रखना चाहिए। बहरहाल बात हो रही थी गीतों की, तो अब ये जो आने वाला गीत है किसके नाम करेंगे? जी हाँ, महबूब इलाही साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, प्रोग्राम में आप शामिल हुए, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून। आने वाला गीत आपके लिए और आपकी जानिब से जितने भी आपके दोस्त सहबाब इस वक्त ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात को सुन रहे हैं, उनमें मोहम्मद तारिक जुल्फी साहब हैं, उनमें चौधरी मुजफ्फर साहब हैं आपके, उनमें जनाब चौधरी रुखसार साहब हैं मैनचेस्टर से, उनका आज फ़ोन शायद आया, हमसे बात नहीं हो पाई या बहुत मसरूफ़ रहे, फ़ोन कर नहीं पाए, लेकिन वैसे अमूमन वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। साथ आपके दोस्त हैं कौन? जी हाँ, सुल्तान महमूद कराची वाला, उनके नाम तो जितने भी आपके महबूब इलाही साहब दोस्त अहबाब हैं उनके और आपके नाम ये हम गीत करने जा रहे हैं। लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा।

0: on 14:13 AM.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम,

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14।
5: यू आर लिसनिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

ये ब्रॉडफोर्डेशियन रेडियो की आवाज़ है। 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है। www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें दिल की गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे। साथ ही साथ हमारे वह अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है और अगर वो हमारे प्रोग्राम में शरीक होना चाहें तो हमारा आने के लिए, इस बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए आर जे रिफत अब्बास पे तशरीफ़ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे।

मेरी इंतहाई गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। इब्तिदा उसके नाम से जो हम सबका मालिक है, खालिक है, पालनहार है, राजिक है, वही जो हमारी छोटी से छोटी खता और बड़ी से बड़ी गलती को देखता है, सुनता है और उसे दरगुजर करने की कुव्वत रखता है। यकीनन वो हम सबका रब है।

और दोस्तों ये तोहफा था लैया पंजाब पाकिस्तान में नज़ीर अहमद साहब आपके लिए, और अब हम आपको लिए चल रहे हैं हडर्सफील्ड की हसीन फ़ज़ाओं में। रियासत साहब का कहना है कि मौसम तकरीबन वही है जो आपने बयान किया। अरे साहब हडर्सफील्ड तो ये है, एक मिनट ये देखिए, मैं खड़ा हुआ मुझे हडर्सफील्ड नज़र आ गया, तो कोई मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाँ जब सर्दी हो तो आपके यहाँ शिद्दत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके बिल्कुल घर के सामने पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है पनाइन का, तो उस वजह से होती है। यहाँ नस्बतन बेहतर रहता है, कंस्ट्रक्टेड एरियाज हैं ये। और अब हम चल रहे हैं आपके तोहफे की जानिब। आपको आपके तमाम अहले खाना को मेरा मोहब्बत भरा सलाम और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने ज़मान में रखे। आपके फेवरेट खान साहब मेहंदी हसन खान साहब मरहूम की आवाज़ में आपने एक गीत पसंद किया है, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफिरत फरमाए। आज भी आप जैसे इनके चाहने वाले मौजूद हैं, अल्लाह सलामत रखे।

और आइए दोस्तों, अब हम आपको लिए चल रहे हैं वेकफील्ड, जहां मौजूद हैं वकार मियां अपने अहले खाना के साथ और शामिल हैं हमारे प्रोग्राम में और सुनना चाहते हैं गीत। आज वो वेल्स का सफ़र कर रहे हैं, कहते हैं कि इंशाल्लाह अपना तोहफा वसूल करते ही निकलूंगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मियां, आप हमेशा हमारी दुआओं में हैं, अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत के साथ आपकी मंजिल मकसूद पर लेकर जाए और खैर वाफियत के साथ आपकी वापसी हो और अहल खाना से मुलाकात नसीब फरमाए। आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल फरमाइए। इसके बाद हम आपको बनले लिए चलेंगे, जहां मौजूद हैं शकील साहब। वक़ार, जीते रहिए।

वादा हम आपको लिए चल रहे हैं बंडली, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम शकील साहब और सुनना चाहते हैं खूबसूरत गीत। आवाज़ मसूद राणा की है और कहते हैं कि आज मसूद राणा की सालगिरह है। भाई अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, तो उनके लिए सालगिरह का तोहफा हम दुआए मग़फ़िरत कर लेते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। मुझे आपने बहुत कुछ याद दिला दिया मसूद राणा का जिक्र करके, हमारे देरीना दोस्तों में शामिल थे। मीरपुर ख़ास से एक लड़का कराची पहुंचा और स्ट्रगलर थे सभी लोग हम लोग, तो उसने आकर अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू निजी महफिलों में जगाना शुरू किया। और उनकी जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि ख़ास स्टाइल से पैंट को वो ऊपर तक चढ़ाते थे, कमर तक, और हर वक्त उनके बालों में तेल लगा रहता था और एक गुफा जो आगे ज़रा सा होता है ना वो निकाला करते थे। और बहुत ही सादा, दिलकश और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। गुरूर नाम की कोई चीज़ उनसे उनके करीब से ना गुजरी थी, इसलिए कि जब निजी महफिलों में गाते थे, जब भी उनकी आवाज़ लोगों के कानों तक पहुंचती थी तो रस घोला करती थी। और फिर आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मसूद राणा को किस कदर उरूज अता फरमाया कि वो हर दिल में उनकी आवाज़ महफूज हो गई। आज उन्हीं मसूद राणा का एक गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है जनाबे शकील साहब ने। आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम आमद का शुक्रिया। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

0: AM Bradford Asian Radio.
1: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
2: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
1: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
2: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
1: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
2: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
1: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

और दूसरा वक्त हुआ है खराज तहसीन पेश करने का। हमारा सेगमेंट वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, जिसमें हम खराज अकीदत उन ख़वातीन शुरा को जो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं और खराज तहसीन पेश किया करते हैं उन नौवारिद और खूबसूरत शायरात को जिन्होंने अदब के मैदान में अपना सिक्का जमाया है। आज हमने जिन शायरा को मुंतखब किया है और अपने कलाम से आपको नवाजेंगी, ये अदब के आसमान पर एक नया चमकता दमकता सितारा है। अभी हिंदुस्तान की फ़जाओं में इनकी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन इनके अशार की गूंज हिंदो पाक दोनों जगह सुनी जा सकती है और दुनिया के चार कोनों तक वो खुशबू पहुंच रही है। हमारी आज की मेहमान नौजवान शायरा हैं रोशन हबीबा रोशनी। इनकी खूबसूरत सोच और फिक्र इस बात को जाहिर करती है कि आने वाला कल इनका होगा।

0: हर चीज मगर तुझे दे दे खुदा, हर चीज मगर तुझे दे दे खुदा, मेरा दिल टूटा तो जाने दे।
1: तो मैं अब आप हैं, रोशन है, बीच में माइक है, चार पंक्तियों से मैं उन्हें दावते।
2: रोशन हबीबा रोशनी के आ गई है मंच पर, रोशन हबीबा रोशनी महफिल शेरो सुखन को बख्शने को जिंदगी के आ गई है मंच पर।

0: हुआ।
1: देखिए आवाज मोटी आ रही, आवाज खींच रही है भाई, थोड़ा सा माइक को सही कर दीजिए।
2: हेलो
1: हेलो,
3: फिर ये इसमें फिट नहीं।
1: हेलो हेलो हेलो, बड़ा सुंदर है ये मंजर, मुझे
0: अच्छा नहीं लगता।
1: अच्छा

जावेद भाई, सुनिएगा, इन्होंने भी मुझे दावत करके होटल में खाना खिलवाया था। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, सुनिएगा कि बड़ा सुंदर है ये मंजर, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा।

देवता, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। और मैं चार मिसरे आप सबके पहुंचाने जा रही हूँ, सुनिएगा, हाजिर करती हूँ मैं। शरारे पर बुलाती थी, शरारे पर पहुंचता था,

0: किनारे पर पहुंचता था।
1: दाद दीजिए भाई, दाद देने में कंजोशी कर रहे हम लोग, दाद दीजिए, हौसला अफजाई भाई।
0: पहुंचता था, मुझे भी लगना चाहिए कि गोड्डा वाले जाग रहे हैं। आप लोग बेदारी का सबूत दीजिए,
1: बेदारी का सबूत दीजिए रोशन।
0: जब मैं तबीयत खराब जाता है, मैं तबीयत खराब से उठकर आप लोगों के बीच आ सकती हूँ, तो आप लोग भी दाद दे सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तुम्हारा प्यार पानी,
1: इसमें दाद मिलेगा,
0: सुनिएगा।
1: वाह क्या बात।

0: मुझे लगता है आप लोगों तक मेरी शायरी नहीं पहुंच रही है।
1: असल है बहुत पूर्व नौजवान ज्यादा है इसमें,
2: डूबे हुए
1: हैं। हाँ खामोश
2: है,
0: अभी आप लोग जो है बहुत देर शम्स परवाना को सुन रहे थे। ये बार बार कहता है कि किसी जो है
1: धनवान की बेटी से
0: ऐसे ही कुछ ये बार बार पढ़ता है, तेरी झील सी आंखों में फंस कर रह गए वरना के ऐसे कलेक्टर बन गए होते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बार बार इस तरह की शायरी ये पढ़ते रहता, ऐसा लगता बंदा कभी धोखा खाया हुआ है। तो जरा आप लोग गौर से सुनिए कि इतनी अच्छी अच्छी शायरी पढ़ी जा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अभी हमारे चचा मोहतरम पढ़ रहे थे कि जो है अभी तक इश्क नहीं हुआ है, तो अब तो मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए।
3: आज ही के लिए रखे हुए थे वो,
0: मेरे ख्याल से अब इश्क होना भी नहीं चाहिए। वैसे नहीं हुआ है तो अल्लाह का शुक्र मनाइए मोहतरम, क्योंकि इश्क करना जो है आसान नहीं है।
1: वाह,
0: अगर धोखा मिल जाए तो जिंदगी भर का।
1: बिल्कुल,
0: क्या कलीमुल्ला।

0: प्रभु ध्यान में मैं तेरी लगती है। आप लोग जुड़ जाइए भाई लोग,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: के दिलों की आग
1: बुझाना।

0: वाह।
1: अभी जो है सुशील सर भी कह रहे थे कि टुक टुक देखती रहती है।
0: वाह।
1: कहे कितनी भारी है रोशन किसी की एक झलक, नजर झुका के नजर झुका के उठा लगती है, नजर झुका के उठाने में देर लगती है।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: राज तेरी मस्ती का।
2: अच्छा परवाना साहब इंतजार कर, कितना भी देरी लगेगी तो इंतजार कर लेंगे परवाना साहब, कोई बात नहीं।
0: शेर है कि राज तेरी मस्ती का मौसमों से पूछेंगे, कितना प्यार करती हो आंसुओं से पूछेंगे। एक बार फिर जोशो खरोश के साथ सुनिए रोशन है बिबा रोशनी को।
1: आइए पढ़ती हूँ सुनिएगा, कि मैं हाजिर करती हूँ सुनिएगा।
0: शाद हो इनायत हो।
1: तू अपनी बसा ले अलग दुनिया

0: अच्छा,
1: ये भी बंद में इरशाद पहुंचाती हूँ, सुनिएगा।
0: बहुत
1: अच्छा। छू ले तू मुझे दर्पण कर दे, इस रोशन को रोशन कर दे।
0: क्या बात है।
1: छू ले

दूसरों असल में अच्छे शुआरा जो होते हैं शेर लोगों की ज़बान खुलवाता है। अब तो एक गलत रस्म चल पड़ी है जो आदाब मुशायरा के ख़िलाफ़ है कि शुआरा ख़ुद कहते हैं कि तालियां बजाएं हमारे शेर पर, जबकि शेर की दाद का तरीक़ा है वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है क्या ख्याल है क्या अंदाज़ है। लेकिन ये दौरे जदीद है सो इसमें कुछ भी मुमकिन है। और बहरहाल हमारी आज की शायरा रोशन हबीबा रोशनी अपना कलाम आप तक पहुंचा रही थी। रोशन हबीबा रोशनी की शायरी मैंने सुनी, ख्यालात व फिक्र बहुत आला है, अच्छी है, पहुंच आला है, लेकिन अभी एतमाद की शदीद कमी है। थोड़ा दिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो एतमाद भी इनमें आ जाएगा। आप सुन रहे थे वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वक्त हुआ जा रहा है कमर्शल का। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में, दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन www.bedfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। साथ ही साथ हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। बढ़ते हैं कमर्शल के वक्फे की जानिब, उसके बाद हम आपको लीड्स लिए चलेंगे जहां मौजूद हैं जनाबे भगत सिंह साहब और उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे। उनका मोहब्बत भरा सलाम हमारे तमाम ही सामईन और नाज़रीन की खिदमत में।

0: Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल
10: 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली

0: पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07884283 49। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: अल्लाह ताला आपको सदा जवान रखे, हमारी ढेर दुआएं आपके साथ हैं। और अब हम चलते हैं हस्ब वादा आपको लेकर ओल्डहम, जहां मौजूद हैं मोहम्मद अयूब चौहान साहब और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत। आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल फरमाइए।

और दोस्तों ये पसंद थी अयूब चौहान साहब की जो हमें ओल्डहम में सुन रहे हैं। जो नए मेहमान अभी अभी बज़्म में तशरीफ लाए हैं उनका जिक्र खैर हो जाए। हमारी बहुत ही प्यारी सी बहना ढेरों दुआओं के साथ आती हैं, शहनाज ब्रैडफोर्ड 18 से हमारी बज़्म में तशरीफ ला चुकी हैं और उन्होंने एक गीत सुनना चाहा है जो ज़रूर हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। तशरीफ लाए हैं खारियाँ गुजरात पाकिस्तान से जनाब परदेसी मजीद साहब और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका चाचू जान भतीजे जान? मैं बिल्कुल सही हूँ। और कहते हैं कि रिजवान साहब को, शकील साहब को, चौधरी साहब को और खालिद साहब को भी मेरा सलाम पहुँचा दीजिएगा, ढेरों दुआएँ कबूल हों जी। आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है लेकिन अभी फिल वक्त मैं नहीं पेश कर पाऊँगा, ऐन मुमकिन है कि प्रोग्राम के अख्ताम से पहले आपकी नज़र कर सकूं, इसलिए कि मेहमान क्यू में पहले से मौजूद हैं। अब हम लिए चल रहे हैं आपको डनकास्टर सिटी, पुराने गीतों के शैदाई हमारे बहुत ही खूबसूरत से लिसनर हैं जनाब सिराज मुनीर साहब, और कहते हैं कोई एक कता हमारी नज़र कर दिए। ज़रूर करेंगे भाई, आप कहें और हम ना सुनाएं। तेज़ बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, एक तेरा जिक्र था जो मेरी सदाओं में रहा। कितने लोगों से मेरे गहरे मरासिम हैं मगर तेरा चेहरा ही फ़कत मेरी निगाहों में रहा। तेज़ बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, एक तेरा जिक्र था जो मेरी सदाओं में रहा। और कितने लोगों से मेरे गहरे मरासिम हैं मगर एक तेरा चेहरा था जो मेरी निगाहों में रहा। आपकी पसंद लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए। आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।

और दोस्तों ये पसंद थी सिराज मुनीर साहब की डंकास्टर सिटी में, जिसे परदेसी मजी साहब ने खारियाँ गुजरात में बेइंतहा पसंद किया और कहते हैं कि वाह वाह वाह जी, क्या बात है जी। और अब हम चल रहे हैं आपको लेकर उस गीत की जानिब जिसे हमारी प्यारी सी बहना ब्रेडफोर्ड 18 में सुन रही हैं और सुनना चाहती हैं, और कहती हैं आपसे मैं हमेशा अपने बचपन के मकबूल गीतों की फरमाइश करती हूँ, हमें इल्म है इस बात का कि आप इस बहाने सैर कर लेती हैं अपनी हसीन यादों की बचपन में, हम ज़रूर शामिल प्रोग्राम कर रहे हैं उस गीत को जो आपने सुनना चाहा है, और कहती हैं कि सिर्फ एक दुआ आपके मुंह से सुनने के लिए मैं पूरा प्रोग्राम आपकी सुनती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी जोड़ी को सलामत रखे और बच्चों की बहारें दिखाए। और वो मुझे एक ऐसे बुज़ुर्ग का रुतबा देती हैं, कहती हैं हमारे बुज़ुर्ग अब नहीं रहे, आप जिस तरह से दुआएं देते हैं मुझे ऐसा लगता है कि दिल की गहराइयों से निकल रहे हैं, ये मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने ही ज़ुमान में रखे।

और अभी आप हमारी प्यारी सी बहना शहनाज ब्रैडफोर्ड 18 से उनकी पसंद सुन रहे थे, आवाज़ अहमद जहांज़ेब की थी। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शल्स का। कमर्शल के फौरन बाद हमारी काबिल सद एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा लंच ब्रेक पर हैं और आपके लिए भी तोहफा लाई हैं और अपने लिए भी एक गीत मुंतखब किया है। ये दोनों काम होंगे लेकिन कमर्शल के वक्फे के बाद। मैं हूँ रिफत अब्बास, आदाब उन तमाम अहबाब की खिदमत में जिन्होंने अभी अभी प्रोग्राम सुनना शुरू किया है। आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडिया वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज़्म में तशरीफ लाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। नंबर एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ, 01274 ब्रैडफोर्ड का कोड है और 306677 हमारे स्टूडियो का नंबर है। मुलाकात होती है कमर्शल के वक्फे के फौरन बाद, जब हम आपके लिए डॉक्टर साहब का लाया हुआ तोहफा आपकी नज़र करेंगे। आज भी उन्होंने बहुत खूबसूरत इंतखाब किया है और डॉक्टर साहब की पसंद का गीत उनकी नज़र करेंगे। आपकी आमद हमारे लिए हमेशा बाई से मसरत हुआ करती है।

तो अब हम चल रहे हैं मैनचेस्टर के सनती शहर और चौधरी रुखसार अहमद साहब का तोहफा उनकी नज़र कर रहे हैं, जिनकी आमद आगाज प्रोग्राम में ही थी और हमारा साथ निभाते हैं प्रोग्राम के अख्ताम तक। इसके बाद सुमेरा बिटिया आपका तोहफा और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान, जहाँ मौजूद हैं परदेसी मजीद साहब, उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे। चौधरी रुखसार अहमद साहब, परदेसी मजीद साहब ने खाड़ियाँ गुजरात से आपके लिए मोहब्बत भरा सलाम भेजा है। तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए।

तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूं, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूं।

और आइए दोस्तों आपको खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान लिए चलते हैं, जहां परदेसी मजी साहब ये खूबसूरत गीत सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। और इसके बाद मुझे लगता है प्रोग्राम का आखिरी तोहफा सुमेरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 की जानिब से उनकी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम मिडिल्सब्रा में होगा। पहले खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान चलते हैं और पेश करते हैं परदेसी मजीद साहब की पसंद।

बिटिया की ख्वाहिश को पूरा न कर पाया। अब गजल उसने छेड़ी, अख्तिताम पजीर हुआ। इस गीत की वजह से थोड़ी सी समा खराशी हुई होगी हमारे सुनने वालों की खिदमत में, माज़ के नशियात का सिलसिला जारी न रह सका, बहुत से इलाकों में सुन ना पाए होंगे। कोई बात नहीं, उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बत के पैगंबर रिफत अब्बास को भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह हाफिज़ नासिर। मेरा बिटिया, आपका ये गीत मैंने नोट कर लिया है। इंशाल्लाह कल आपकी प्यारी प्यारी कज़न्स की नज़र करेंगे। आज आप बहुत ताख़ीर से वापस आई हैं, इसलिए हम वक्त में समो ना सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह हाफिज़ नासिर। सब बख़ैर, फ़ी अमानिल्लाह।

0: 3 a.m. and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना

0: होगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorn Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257।
11: दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस 81
12: उसकी पहनेगा तो सब ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, आम दुल्हे को ज्यादा ना दें।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414-260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूबर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: ADN बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कापिर से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
1: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com।
1: बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर

सामने अभी आप समाप्त कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत गीत राजा भैया की फिल्म से लिया गया ये गीत, उदित नारायण और नारायण के उदित नारायण की आवाज़ में था ये गीत। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपने पसंद किया होगा। चौधरी मुजफ्फर साहब, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत दे, और आने वाला गीत आपके नाम करेंगे और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम होगा ये गीत।

दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार। बिल्कुल चौधरी साहब, ज़बरदस्त गीत एनएस एंड भट्टी की आवाज़ में था और आपकी फरमाइश पर। और इसके साथ साथ मुनव्वर शरीफ ने काम किया इस फिल्म में, और वो जब यहाँ तो साथ चल रही होती है ना, वीडियो भी हम देख रहे होते हैं, और जो डांस साथ उसका चल रहा था मुनव्वर शरीफ का, बहुत ही ज़बरदस्त। जी आने वाला गीत भी आपके नाम करेंगे और आपके पूरी लिस्ट में है जनाब चौधरी आसफ रियासत है, चौधरी फरियाद है, परवेज खां है, महबूब इलाही हैं, जहम है, तारक जुल्फी हैं, जवेद मीर हैं, तारक भट्ट हैं, शकील भाई हैं, हीरा जी हैं, आमर शहजाद हैं, चौधरी उस्मान है, सफ़ीउल्ला भाई हैं, वाजिद ड्यूसबरी और अयूब भाई चौधरी, अयूब भाई और मनीर चक्की वाले, जनाब शरफुद्दीन पापा और ख्वाजा शफीक, सलीम उर्फ रफ़ी जो हैं, और अतीका जी एंड जहांगीर ड्यूसबरी वाले, सभी के नाम आपका ये गीत हुआ। और अभी जो प्ले करेंगे गीत, ये भी उन्हीं के नाम होगा, क्योंकि ब्रेक में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। चलिए जी, हम बोलते कम हैं, आपको गीत सुनाते हैं, फिर ब्रेक आएगी, अब लेकिन ब्रेक इस पार

आके तेरी बाहों में हर बात लगे संदूरी। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाज फरमाया साहब, मैं उम्मीद करते हैं ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। और इस दौरान शामिल हुए जनाब चौधरी रुखसार साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, वो लगता है कुछ प्ले प्रेस करना याद नहीं रहा बातों बातों में, तो बैकग्राउंड भी साथ ही मेरे ख्याल में चलती रही, तो गीत बहुत प्यारा था। चलिए डबल चलता रहा सिस्टम, तो ये होता है बड़े शहरों में। तो कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और आने वाला गीत तो हमने क्यों कर लिया है, जो आपने बताया है, ये भी कोशिश करते हैं थोड़ी देर बाद चौधरी रुखसार साहब ये गीत ढूंढते हैं, तो वो आपके नाम करेंगे। अभी हमने एक गीत क्यों किया है वो आपके नाम करते हैं।

और चौधरी साहब सब आपकी तरफ से, भाई चौधरी मुजफ्फर साहब, चौधरी फरियाद और तारिक जुल्फी साहब के नाम करेंगे। चौधरी मुजफ्फर साहब का मैं लिस्ट पढ़ रहा था भाई तारिक जुल्फी की, तो चौधरी मुजफ्फर साहब ने कहा मेरा नाम नहीं आया अभी तक। मैंने कहा वो लिस्ट लंबी थी इसलिए मैंने वो रोका। अभी दूसरी लिस्ट में, दूसरी लाइन में सबसे पहले आसफ रियासत और मोहम्मद मुजफ्फर जनाब। चौधरी मुजफ्फर साहब आपका नाम है और चौधरी रुखसार साहब की तरफ से भी आपके नाम करेंगे ये गीत, और आपके जितने दोस्त हैं और तारक बट, ड्यूसबरी मोहम्मद जहांगीर और ड्यूसबरी बाबा जानी और मोहम्मद इब्राहिम के नाम भी यही गीत होगा। बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो, बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो। क्यों गहरा है गम शायद, कोई गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो, कोई गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो। यूं ही चलते हुए तन्हा कोई गमगीन सा नगमा, यूं ही चलते हुए तन्हा कोई गमगीन सा नगमा। तुम अक्सर गुनगुनाते हो, तुम अक्सर गुनगुनाते हो। दुराने गुफ्तगू यूं ही मिली नज़रों से जब नजरें, दुराने गुफ्तगू यूं ही मिली नज़रों से जब नजरें, तो बातें भूल जाते हो, तो बातें भूल जाते हो। किसी गुम सुम सी हालत में, किसी गुमसुम सी हालत में या फिर बारिश के मौसम में, किसी गुमसुम सी हालत में या फिर बारिश के मौसम में, फ़कत इतना ही कहते हो उदासी बेवजह सी है, उदासी बेवजह सी है, बहुत बोझल तबीयत है, भला सच क्यों नहीं कहते, भला सच क्यों नहीं कहते, किसको याद करते हो, भला सच क्यों नहीं कहते, किसको याद करते हो। बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो, बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो। कोई गहरा है गम शायद, कोई गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो, कोई गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो।

0: ابھی آپ سماعت کر رہے تھے فلم ساجن سے لیا گیا گیت میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تمہیں سے کرتا ہے, بہت ہی خوبصورت گیت. اور چودھری ٹکسال صاحب آپ کا گیت بھی لیکن ڈھونڈ تو لیا ہے, اور اب بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے ملتے ہیں بریک اس پار اور یہ آپ کو سنائیں گے.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज.
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो.
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले.
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं.
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई. जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है.
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार.
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज.
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577. दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका. पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर. होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक. आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे. फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले. बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से. बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL. बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी.
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है.
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा. मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं. मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे.
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR. टेलीफोन 07885 428 3499. अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3.

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवीज,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आप...

जी भाई, शकील साहब चौधरी साहब ने कहा है कि शायरी बहुत ज़बरदस्त थी, उन्होंने काल दौरान में दौरान भी की थी, लेकिन मैंने बात साथ साथ कलाम की तरफ मेरा ध्यान था, तो उन्होंने भी फिर कॉल किया कि अपने तारीफ़ नहीं की हमारे तरफ से, जनाब आपकी शायरी आप देखें कितनी पसंद करते हैं। स्पेशल चौधरी मुजफ्फर साहब ने दोबारा कॉल किया, कहते हैं बहुत ही प्यारी शायरी थी, और जनाब साथ साथ आपकी फरमाइश पर मसूद रानी का गीत आपकी तरफ से सभी सामेईन के नाम करते हैं।

जी हाँ सामिन, आज का गीत आखिरी गीत, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उस दुनिया कायनात में सबसे हसीन चांद है और उसमें भी दाग है मुकम्मल, सिर्फ हमारे रब के और उसके महबूब की ज़ात है। इंसान खताकार है, उन्हीं में से हम भी एक हैं। दौरानी प्रोग्राम हमसे भी गलती की तहफ होगी हो तो उम्मीद करते हैं आप अपना समझ के हमें माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे जहाँ में भी, इस दुआ के साथ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह खिलते रहें और मुस्कराते रहें। अपने प्रेजेंटर, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई महबूब इलाही को दीजिए इजाज़त। हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और हम सब का अल्लाह निगहबान।

0: online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
12: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
13: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
12: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
13: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
12: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 012 7

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.